0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Get ready to move.
7: It's all about the beats. Wow,
8: FM. Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: ਮੁੰਡਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1.
5: It's commercial time.
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
11: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
11: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
11: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
12: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
10: Park Foods, जो नाम है मायार का।
13: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
14: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
13: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
14: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
13: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजान 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजान 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनमारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
3: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
4: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
5: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
4: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
5: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
4: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
5: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
4: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
3: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
10: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, xlcnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music.

0: खैरी है जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: लासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन.
6: It's commercial time.
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है.
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
9: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का.
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

Better. The radio station for people who love music. 107.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
8: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
9: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
8: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
9: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
8: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
9: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
8: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
9: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
8: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
9: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
8: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
10: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baysford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
9: हजार 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसीब हेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

जी तो लिसनर वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हुए वेलकम वेलकम वेलकम स्वागतम स्वागतम स्वागतम उन समादों के लिए है जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून के 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। अलावा जी आपको बताते चलें कि आपने मुझे बताना है कि आप कैसे हैं, कैफ अहवालक मगंग दंग मगा इंदे वर्तनम सोम सोमाणु केम छुबोन जो की हाल चाले मेरा ते तुआडा। जनाब मैं फिट फाट बिल्कुल परफेक्ट और बड़ी वासिक उम्मीद ऊपर वाले से कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब गपशप हमारी साथ साथ चल रही है, पर्सनैलिटी ऑफ द डे का सेगमेंट भी हमारे पास आने वाला है, लेकिन हल्की सी एक बार फिर वेदर की सूरत हाल आपको बताते चले कि नाम आज नॉटिंघम शायर का टेम्परेचर अभी तक 30 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम रिकॉर्ड किया गया। सामने ह्यूमिडिटी का लेवल 0% है, तेज सनशाइन है, हल्की हल्की गर्मी भी आपको लगेगी, बारिश के कोई इम्कानात नहीं है टिल वीकेंड। लेकिन आपको ये बताते चलें कि आज रात के हवाले से क्या सिनेरियो है। टुनाइट विल सी एरियाज ऑफ क्लाउड मूविंग इन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, इट विल बी मोस्टली ड्राई बट द ऑड स्पॉट ऑफ रेन कैन नॉट बी रूल्ड टोटली आउट। तो जनाब ये सिचुएशन है, इसलिए अगर आपके प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का या मूव आउट करने का या नॉटिंघमशायर से बाहर जाके की मीटिंग कोई बिजनेस ओरिएंटेशन कोई प्रेजेंटेशन देने का, तो फिर जनाब ये मौजूद समय है आपके लिए अगर आप बारिश लवर नहीं है तो। एनीवे गपशप हमारे साथ साथ चलती रहेगी, आपको बताते चले कि जनाब आप मुझे रब्ता कैसे कर सकते हैं। 0115 710 9 71 ये वो नंबर है जिस नंबर पे आप मुझसे रब्ता करेंगे। व्हाट्सएप कीजिए, लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लाइव कॉल के जरिए आप शामिल हो जाएंगे हमारे साथ हमारी लाइव ट्रांसमिशन में जिसे कहते हैं गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। लावा जी आपको ये बताता चलूं कि जनाब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप क्या करेंगे, एड्रेस बार पे आप जाएंगे और टाइप करेंगे रेडियो नहीं live.radiofza.co.uk, ये जनाब आ जाएंगे। और ऐप को डाउनलोड करने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीका है, वो भी मैं आपको बताता हूँ।

जनाब आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल जनाब सर्च बार में, और फिर उसके बाद जनाब जाएंगे आप कहां पे, एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर या पीच या येलो कलर में लिखा फजा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, और जब आप उसको प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी स्मार्ट होगी नजर। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

जी तो लिसनर, पर्सनैलिटी ऑफ द डेके हवाले से भी मैं बात करूंगा। बड़ी जबरदस्त सी पर्सनैलिटी आज मैंने चूज की है, जो सेगमेंट हमारा आगे आएगा, लेकिन अभी हम कुछ बातें करेंगे। ये जो जंक है मेरा, ये आपके साथ बातें करने का, लेकिन इसके अलावा मैं कोट ऑफ द डे आपके साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। और कोट ऑफ द डे क्या है जनाब? कोट ऑफ द डे मार्टिन लूथर, बड़ी जबरदस्त से ऑथर है, उन्होंने कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, अगर आप चल नहीं सकते तो रेंगें, पर आगे बढ़ते रहें। अपनी सोच और सिमत को दुरुस्त रखें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी चक मार के। बिल्कुल जनाब, यही बात है। और जब हम इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा मोटिवेट होके या थोड़ा ज़्यादा मोटिवेशनल लेवल पे सोचते हैं, तो फिर हमें कामयाबी कभी कभी उस जगह पे नजर आती है जिस जगह पर अक्सर कामयाबी मिलती नहीं है। आपके सिनेरियो में या मेरे सिनेरियो में या आगे गर्दोनवा में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिससे आप नाउम्मीद हो चुके हैं। ऊपर वाले की ज़्यादा है, जब आप होप रखते हैं, जब आप उम्मीद रखते हैं, तो फिर आप उम्मीद पे कायम रहते हैं। आपको एक और चीज़ में मज़े की बताता चलूँ जनाब, आप एग्री करेंगे इस चीज़ के साथ कि जब इंसान उम्मीद का ताकत यकीन रखता है ना, ताकतवर यकीन, यानी उम्मीद का बड़ा पुख्ता यकीन, बड़ा सॉलिड रीज़न रखता है कि जनाब आई विल बी द सक्सेस पर्सन इन द एरा, या मैं जनाब सबसे ज़्यादा सक्सेस रहूँगा या मैं कामयाब रहूँगा, तो फिर होता क्या है? फिर होता ये है कि ऊपर वाले की ना कुछ ताकतें हैं जो इस पूरी जो खला है, ये पूरा एरा है, या हवा है, विंड है, या जो हमारे ऊपर आसमान है, इस सिनेरियो में ये सारी चीज़ें हर वक्त बैठी रहती हैं। और ये मतलब कुछ ऐसी ताकतें हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव ताकतें हैं जो सारी आपके साथ लग जाती हैं, जुट जाती हैं आपकी मेहनत में, आपकी लगन में, आपकी प्लानिंग में, आपको कामयाब करने के लिए। जब आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर काफ़ी सारे लोग आपके साथ मिल जाते हैं। लेकिन जहां तक बात होती है ना कि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम तरक्की की राह पे नहीं चल सकते, आपको बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ काटनी पड़ती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आती हैं, और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, तो उस वक्त फिर क्या होता है कि अपना अपने मोटो को भूलना नहीं है, अपने अपने जो गोल है, अपना जो रीज़न है आगे बढ़ने की, उसको आपने रोकना नहीं है। जब तक आप रोकेंगे नहीं, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक लम्हा ऐसा आता है सामीन दरमियान में कि इंसान है ना, थक जाता है, हार जाता है, अपने आप से कोशिश करता है कि नहीं यार, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैंने ये सारा कुछ देख लिया, मैंने सारा कुछ समझ लिया, मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया, मैंने अपने आप को मोटिवेट रखा, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? तो इसका ये मतलब है कि ऊपर वाले की ज़ात बेहतर जानती है कि जिस समय में आप कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त में आप कोशिश कर रहे हैं, वो वक्त आपका नहीं है, बेसिकली वो समय आपका नहीं है। आपने थोड़ा सा वेट करना है, आपने एकदम से उस ताकत को लगाना नहीं है, क्योंकि एकदम जब आप कहते हैं ना, देखें अगर हम अक्सर वर्क करते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जितने भी हमारे लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, बिजनेस, अकाउंट्स, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जनाब जब आप अंतक कोशिश करते हैं तो फिर आप थक जाते हैं। थकना बिल्कुल बेसिकली मकसद नहीं है। अगर आप थक जाएंगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। आपने क्या करना है कि उस वक्त जब आपकी हिम्मत टूट जाए और जब आप ये सोचें कि नहीं यार, आज तो मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, तो फिर एक ऐसी किरण, एक ऐसी उम्मीद जो आपके डीप इनसाइड से आपको मिले, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके फ्यूचर को विजुलाइज करने का एक तरीका हो सकता है। इमेजिन करें अपने फ्यूचर को, जब आप बिल्कुल थक के हार जाएं और आपके खदशात आपके जहन को कवर कर लें, और खदशात आप कंट्रोल कर लें, और खदशात आपके हवाले आपको कभी भी आगे ना बढ़ने दें, तो फिर एक लम्हे के लिए थोड़ा सा ब्रेक लें और फिर सोचें कि आपने जो सोचा वो कितना हसीन है, वो कितना खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती क्या है? उसकी खूबसूरती ये है कि वो आपको मज़ीद ताकत देगा। वो विजुलाइजेशन है जो आपकी, आपके फ्यूचर की, वो मज़ीद ताकत देगी। तो यही लोटन माथर साहब भी कह रहे हैं ना कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो फिर दौड़ें, आप आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल जनाब, रेंगने से शुरू करें। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विन द रेस। एक चीज़ में बड़े मज़े के सामीन आपको बताता हूँ कि कहते हैं ना, कछुआ और खरगोश की बड़ी फेमस स्टोरी है जनाब, कि खरगोश सो गया और कछुए ने नाम अपनी जंग जी है, वो जो रेस है, वॉट एवर वॉज, वो उसने जीत ली। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, क्या कभी किसी ने ये सोचा कि उस रेस के बाद क्या हुआ था? उस रेस के बाद भी एक और रेस थी, उसके बाद भी एक और रेस थी? नहीं,
कोई नहीं सोचेगा। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम चांद पे रखा था, दूसरा किसने रखा, किसी को कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब वीर सरसे बुद्धे जनाब थ्री इडियट्स के प्रिंसिपल ने ये बात इनॉग्रेशन सेरेमनी की थी, जब आईसी के फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स थे वो पहुंचे थे, तो उस वक्त उन्होंने चीज की थी। इसलिए लोग हमेशा सक्सेस को याद रखते हैं, कोई भी नहीं देखेगा कि आपने उसके लिए मेहनत कितनी की है, कोई भी नहीं देखेगा कि उसके पीछे आपका एक लंबा टेन्योर है, उसके पीछे आपका एक लंबा स्थान है, उसके पीछे आपका एक लंबा एक बहुत ज़्यादा मेहनत है आपकी। आपने उस मेहनत को कभी भी रायगां नहीं जाने देना। अगर आप उस मेहनत को रायगां जाने देते हैं तो इसका ये मतलब है कि फिर आप नाकारा हो चुके हैं। अगर आप अपनी मेहनत को काबू में नहीं रख सकते, अगर आप अपनी मेहनत को अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास ज़िंदगी की मुख्तलिफ चीज़ों में अगर कोई चीज़ बचेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ ना मायूसी बचेगी। जी बिल्कुल, मायूसी बचेगी, ना मायूसी नहीं, मायूसी बचेगी। और मायूसी के साथ साथ आपको अक्सर वो लोग भी मिलेंगे जो आपसे ज़्यादा मायूस होंगे, जिनको देख के आप खुद मायूस हो जाएंगे, फिर वो जो खदशात हैं वो आपके ऊपर धावा बोल लेते हैं। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि कायनात की जो पॉजिटिव ताकतें हैं वो आपको आपका साथ देने में लग जाती हैं, फिर इस तरह जो नेगेटिव ताकतें हैं ना इस फ़िज़ा में मौजूद, इस एरा में मौजूद, इस ओरा में मौजूद, वो भी फिर उन नेगेटिव ताकतों को सपोर्ट करना शुरू करता है, फिर इंसान मुसलसल बतदरीज नाकामयाब होता जाता है। इसलिए गुजारिश है कि आज के दिन के हवाले से अगर हम कुछ मोटिवेशन लेना चाहते हैं या हम ये सोचते हैं कि हम अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल में लेके आए, अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत के साथ लेके आए आगे, तो फिर तो जनाब सामीन ये ज़रूरी चीज़ है कि आपने अपने आप को मनवाना है, आपने अपने आप को पहचानना है। जब तक आप अपने आप को पहचान नहीं लेते आप आगे नहीं बढ़ सकते। अपने आप को पहचानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब आप सुबह उठें, फ्रेश हों, ब्रेकफास्ट करें, उसके बाद जब अपने आप को अपनी ड्रेसिंग के लिए आप अपने मिरर के सामने खड़े हों, तो फिर आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें, आप अपनी आंखों में आंखें डाल के ये सोच सकें, ये समझ सकें कि नहीं यार,

जी बिल्कुल, कहना मैं ये जा रहा था कि आप अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकें और लोगों को ये बातें बता सकें कि आपके पास जो ताकतें मौजूद हैं, आपके पास जो रीजंस मौजूद हैं कामयाब ना होने की, वो रीजंस बेसिकली इसलिए नहीं है कि आप कामयाब होना नहीं चाहते, वो इसलिए कि अरे आप जैसे कुछ ना खुदा हैं, आप जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें आगे जाने नहीं देते। अगर कभी किसी को बताना पड़ भी जाए ना, या किसी को एक्सप्लेन करना पड़ भी जाए कि आपने जितनी कावशें की हैं, आपने जितनी मेहनतें की हैं, आपने जितना रंग लाया है,

0: आप जितनी रंग लेके आए हैं, आपने जितनी मेहनतें कर चुके हैं, वो मेहनतें बेसिकली आपके लिए ही हैं या आपके आने वालों के लिए हैं। असल में आने वालों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब इंसान ये सोचता है ना कि यार अब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अक्सर कब तक कोशिश करता रहूंगा, जब मैं कोशिश नहीं कर रहा तो लोग तो देख रहे हैं ना यार। लोगों को दिखाने के लिए आपने कोशिश कभी भी नहीं करनी, लोगों को दिखाने के लिए जब भी आप कोशिश करेंगे आप हमेशा मात खाएंगे, और जब मात आप खा जाएंगे ना तो उस वक्त आपको संभालने वाला कोई भी नहीं होगा, उस वक्त संभालने वाला आप खुद होंगे। आपका अपना कॉन्शियस, आपका अपना जमीर, आपकी अपनी वो विजुलाइजेशन जो आपने इमेजिन की है कि कामयाब होने के बाद आप कैसे लगेंगे, जो ड्रीम आपने सोचे हैं कि वो ड्रीम आप कवर कैसे करेंगे, उन ड्रीम्स को कवर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने मेहनत करते रहना है, थोड़ा बहुत चलते रहें। जब तक आप थोड़ा बहुत चलते रहेंगे तब तक आप इंजॉय करेंगे, और जब तक आप इंजॉय करेंगे, देखिए ना आवाज़ मेरी भी कैसी दमदार हो गई है, तो तब आपको एहसास होगा कि आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, ऊपर वाले ने सिर्फ आपको दिए हैं, फिर कुदरत जुट जाएगी आपके लिए आपको कामयाब बनाने में। तो जनाब ये था जबरदस्त मोटिवेशन का सब्जेक्ट जो चल रहा था हमारे साथ।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com. to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: लासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
8: Radio Bazaar 97.1 FM.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक, रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड वाली मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल की अथाह से खुश आमदेद कहते हुए। तो जनाब एक बार फिर से स्वागत है उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया 97.1 एफएम पे या फिर डैप पे या फिर हमारी ऐप पे। तो फिर से एक बार मैं दोहराए देता हूँ कि जनाब समझाएं सुलझाएं बतलाएं आप सब लोग कैसे हैं, कैफ अहवाल माकंगदा गुमागा इंदे वर्तनम सुकम सुकमानो केम छो बोन जो की हाल चाले मेरा तितवाड़ा।

सुनिए, जबरदस्ती मोटिवेशन भरी कोट लेके और मोटिवेशन से भरा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा और आपका साथ रहता है जनाब एवरी मंडे टू सैटरडे, और एवरी मंडे टू सैटरडे मेरा आपका साथ रहता है ठीक 8 से लेकर 10 बजे तक, लेकिन कभी मैं 9 बजे आता हूँ। लेकिन आज मैं थोड़ा सा प्रोग्राम शुरू हो चुका था, ट्रैक्स प्ले किए थे, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जब हम ट्रैक्स प्ले करते हैं इसका ये मतलब है कि हम आपको सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, लेकिन बैक टू बैक जो म्यूजिक चलता है वो बेसिकली आपको स्वस्थ करने के लिए चलता है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम है, और गुड मॉर्निंग नॉटिंघम की ये जो गाड़ी है कब तैयार होती है, कब फोकस करती है अपने आप को, वो टाइम 8 बजे का ही है। अब आपको ये बताते हैं चलेंगे जनाब, जब अगर आप ये ट्यून करते हैं हमें, और ट्यून करने के बाद आप ये कहते हैं कि ऐप पे सुनना चाहते हैं, ऐप पे कैसे सुनेंगे जनाब, ऐप पे आप सुनेंगे रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल, लिखेंगे सर्च बार में, कहाँ जाके गूगल प्ले में या प्ले स्टोर पे, डेफिनेटली वहां जाके ये टाइप करेंगे तो फिर एक पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन कलर में फसा लिखा आपके सामने आएगा। आप उसको डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे, और जब आप प्ले करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी, स्वाद होगी नजर, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम।

तो लेन आप सामीन एक खूबसूरत सा हमारे पास सेगमेंट है, एंड द सेगमेंट आर द लिसनर्स आर विद मी राइट नाउ। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और एक बार और मैं आपको बताता चलूं कि जनाब जो हमें थैंक यू वेरी मच मोहसिन, यू आर फ्रॉम दुबई, थैंक्स अ लॉट। कामिनी जी फ्रॉम बुलेटिन, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ ऐसे हमारे लिसनर्स हैं जिनका नाम लेना जरूरी है, क्योंकि ये हमें नॉटिंघम शहर से बाहर सुन रहे हैं, थोड़े से स्पेशल है, लेकिन नॉटिंघम शहर की जितनी हमारी कम्युनिटी हमें इस वक्त मुझे सुन रही है, नासिर खान को गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा वॉल्यूम अप कीजिए, क्योंकि अब एक बड़ा जबरदस्त सेगमेंट शुरू होने जा रहा है गुड मॉर्निंग नॉटिंघम में। जी कौन सा सेगमेंट है? सेगमेंट है पर्सनैलिटी ऑफ द डे। जनाब कौन सी होगी आज की पर्सनैलिटी? बिल्कुल स्टारबक्स का नाम तो सबने सुना होगा, कॉफी भी पीते हैं, मैं बड़े शौक से पीता हूं, डबल एस्प्रेसो की शॉट अगर मेरे लिए हो जाए और एक कैपचिनो आप अपने लिए पसंद करें कहीं साइड पे पार्क करने के बाद और मुझे सुनते हुए, तो इन दोनों कॉफीज के मग को आप एंजॉय करेंगे स्टारबक्स के कप में। अब स्टारबक्स की बेसिकली क्या सिनेरियो है, 100 बिलियन डॉलर की कंपनी ये कैसे बनी, वर्ल्ड वाइड इतनी ब्रांचेस कैसे बनी, और कॉफी बीन्स कहां से आए, किस तरह लेके आगे चले, आपको ये मैं बताता चलूं कि जनाब जबरदस्ती स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी को समझने के लिए सुनने के लिए हमारे साथ रहिए, एंजॉय कीजिए जबरदस्ती सक्सेस स्टोरी। आपका मेजबान आसर खान है आपके साथ डेफिनेटली। तो

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से ऑल द वे फ्रॉम नॉटिंघम। जनाब नॉटिंघम से आपकी खिदमत में एक बार फिर से आपका मेजबान आसिर खान हाजिर है गुड मॉर्निंग नॉटिंघम का खूबसूरत सा प्रोग्राम लिए। तो जनाब नॉटिंघम शायद के जितने भी आदिवासी हैं जितने भी वासी हैं हमारे जितने भी रहने वाले हैं और जितने भी पुरुष हैं बल्कि महापुरुष हैं उनसे गुजारिश यह है कि जनाब सुनिए आपने स्टोरी हावर्ड शॉल्स की कि कैसे जनाब ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने अपने आप को किस लेवल पे जाके मोटिवेट किया और किस तरह जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजरते हुए स्टारबक्स को $100 बिलियन की कंपनी के लेवल तक पहुँचाया। जनाब डायरेक्टरशिप में भी हैं ऑनरशिप में भी हैं ये और करंट CEO भी हैं। अब आपको एक चीज़ और बताते चले कि बड़ी प्यारी सी बात हॉवर्ड ने की है। हॉवर्ड क्या कहते हैं, हॉवर्ड ये कहते हैं कि अगर आपके पास आपकी कंडीशन पे कोई काम नहीं है या आपको काम नहीं मिल रहा आपकी कंडीशन पे, तो इसका ये मतलब नहीं कि जनाब आप काम करना छोड़ दें। आप उस काम को टेक ओवर करें और फिर अपनी कंडीशन के मुताबिक उसे बना लें। ये मेन करेक्टर है बेसिकली। हम किस तरह अपने आप को मोटिवेट करेंगे यही सबसे इम्पोर्टेंट है आज के दिन के हवाले से। अभी मैंने तो एक चीज सीखी है कि भाई अगर मेरे बॉसेज हैं या जितने भी आला जाति के हुक्मरान हैं हमारे, अगर वो हमारी कंडीशंस पे या हमारे लेवल पे हमें काम नहीं करने दे रहे, कोई बात नहीं, आप काम उनसे ले लें और फिर अपनी कंडीशंस अपने काम के जरिए उनसे मनवाएं जी के काम ऐसा होगा। बिल्कुल जनाब, यही आज की मोटिवेशन है, यही आज का स्ट्रांग सब्जेक्ट है। और जनाब आपको ये भी पता है कि काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ, आपको बोर नहीं होने दूंगा। कुछ लोग जो ड्राइव करते हुए सुनते हैं खूबसूरत से ट्रैक्स, तो जनाब मेरे पास ट्रैक्स मौजूद हैं और जनाब ज़बरदस्त रीमिक्स है, अक्सर मैं प्ले करता हूँ, आप लोग भी इसको सुनते हैं।

बिल्कुल जनाब, अगर आप मुझे बता सकते हैं कि चाहूं मैं या ना, तो क्या सिचुएशन है बता दीजिए। जनाब आपको बताया कि जनाब मोटिवेशनल सक्सेस स्टोरी के बाद यानी पर्सनालिटी ऑफ द डे के बाद कुछ रिफ्रेशमेंट होना जरूरी है, क्योंकि समय बहुत ही कम रह चुका है मेरे और आपके दरमियान। हार्डली मेरे पास 10-1 मिनट हैं आपसे गपशप करने के, लेकिन उसमें ट्रैक भी आपको साथ साथ सुनाने हैं। लेकिन आप ड्राइव करते हुए मुझे सुने तो डेफिनेटली मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ऑलवेज फास्टन यू सीट बेल्ट एंड डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग।

और अगर आपके पास भी कोई है जिसको दिल ने आपने कह लिया है तो फिर मुझे बताएं ना, कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहते हैं किसी ऐसे बंदे को जिसको आप बताना नहीं चाहते लेकिन गुड मॉर्निंग नॉटिंघम कहना चाहते हैं या गुड मॉर्निंग सबल खैर कहना चाहते हैं किसी भी सिटी से, किसी भी एरिया से, किसी भी जगह से, तो मैं हूं ना आपके साथ। 01157100971 ये नंबर है मेरे लाइव स्टूडियो का, इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए, बताइए कि आप क्या चाहते हैं। अलावा जी लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जनाब आप जाएंगे live.radioofficer.co.uk, एप्लीकेशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे जनाब, आप जाएंगे गूगल प्ले पे, प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो 97.1 FM ऑफिशियल, कहां जाके जनाब एड्रेस बार में, उसके बाद डाउनलोड करेंगे, गेट करेंगे एक गोल्डन कलर की शक्ल में लिखा हुआ फजा पर्पल बैकग्राउंड के साथ, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे गेट करेंगे तो यही आवाज ठहरेगी आपकी बातों की नजर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नॉटिंघम। कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स जो आपके स्मार्ट होंगे नजर है, ट्रैक्स के उस पार हल्की सी गपशप रहेगी सिर्फ आपको गुड बाय गुड बाय गुड बाय कहने के लिए, जाइए कीमत स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 FM एंड योर होस्ट नासिर खान इज राइट हियर एंड एंजॉयिंग ब्यूटीफुल ट्रैक्स विद यू।

ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਾਵਾਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ। और जो जो सोने लोग हैं अपनी मौजूदगी के एहसास दिलाएंगे, कैसे दिलाएंगे आपको बताते चलेंगे। 715-710-9711 गुड मॉर्निंग नॉटिंघम के खूबसूरत से सफर में ये हैं आपके साथ खूबसूरत से ट्रैक्स और आपका मेजबान आसिर खान भी आपके साथ।

0: ख्वाबों की ना अक्सर मासूम लोग भी होते हैं जो कभी कभी नींद भी चुरा लेते हैं। और इसी सना में ना बिल्कुल क्लोजिंग पे मेरा प्रोग्राम है, लेकिन ट्रैक्स भी साफ चल रहे हैं। बीजे मैं अपना स्विच नहीं करूंगा, आपको ये बताता चलूँ कि जनाब ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे मैं आपको अपने साथ रखना चाहता हूं कि जनाब आपको बताते चलें कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं अपकमिंग मंथ में, यानी 14th of August को जनाब जश्न आज़ादी का बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त एक फंक्शन होने जा रहा है। कहाँ पे इवेंट है जनाब? एक्सेलसियर नवाब लोटस रोड नॉटिंघम में जनाब, बिल्कुल। और ये क्या करते हैं जनाब, एक्सेलसियर नवाब में समन मारवी आएंगी जनाब 14 अगस्त को, भूलिएगा मत। शाम 6 बजे के ऑनवर्ड बुकिंग जारी है, और बुकिंग के लिए आपने रब्ता भी करना है। रब्ता करने के साथ साथ आपको इस चीज़ का भी बताते चलें कि जनाब जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं वो अपने बच्चों को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। और बुकिंग जारी रखने के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो काम है वो ये है कि जनाब एक्सेलसियर नवाब को विजिट करना है .co.uk, वहाँ जाके बार कोड स्कैन करना है और जनाब अपनी सीट कंफर्म करनी है। मीट एंड ग्रीट भी अवेलेबल है, और जनाब उसके बाद नॉर्मल स्टैंडर्ड सीट्स भी अवेलेबल है। तो जनाब ये सारी गपशप जितनी भी हमारी आज की मोटिवेशन है, हमारे साथ साथ रही, मैं आपके साथ रहा जनाब, लेकिन इस
1: commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: Hit music. Back to back.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड डैब पे। तो लिसनर्स एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि 01157100971 ये है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये वो नंबर है जिसके ज़रिए से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ना सिर्फ आप हमसे जुड़ सकते हैं बल्कि इस नंबर के थ्रू आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि इस वक्त आपके माइंड में क्या चल रहा है और आज के दिन के हवाले से आपकी क्या सोच है, क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं और इस नंबर के थ्रू हो सकती है आपकी और मेरी कम्युनिकेशन। सो कुछ बातें मैं आपको अपनी सुनाऊंगी और साथ ही साथ कुछ आपकी सुनी जाएंगी। सो आपको करना कुछ यूँ होगा कि अपने नाम के साथ कोई भी प्यारा सा पैगाम या जो कुछ आप हमसे शेयर करना चाहते हैं हमें लिखकर भेज दीजिए, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको किस तरह के टॉपिक्स पसंद हैं, किन मौजूदात पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं और किस तरह का म्यूज़िक है आपको पसंद। सो डीवा डायलॉग में वो सभी गाने शामिल किए जाएंगे जो कि हमारे लिसनर्स को पसंद हैं। एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि www.radiofaza.com.uk इट्स अवर ऑफिशियल व्हाट्सएप ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं और रेडियो फजा 97.1 FM से जुड़ी हर तरह की मालूमात आप सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। सो लिसनर्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं या फिर अपने मूड को करना चाहते हैं थोड़ा सा इन्हेंस, सो आप अपने मूड को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने सफ़र को खूबसूरत बना सकते हैं। सो अगर आप हैं रास्ते में या पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के करीब, सो फजा डैब के थ्रू हमें ट्यून करें और अपने इस दिन को मज़ीद खुशगवार बनाएं। सो लिसनर्स, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत सारी चटपटी गॉसिप्स होंगी आज के दिन में, लेकिन उससे पहले शामिल करते हैं शो में एक खूबसूरत सा ट्रैक। सो बेसिकली ये ट्रैक हमारे एक लिसनर की रिकमेंडेशन पर आया है, सो हम ज़रूर इसको शो में शामिल करेंगे क्योंकि हमारी पूरी कोशिश यही होती है कि शो में वो सभी बातें, वो सभी चीज़ें शामिल की जाएँ जो कि हैं आपको पसंद। सो आइए अगर सुनते हैं ये वीकेंड का सॉन्ग एंड देन सॉन्ग से वापसी पर कंटिन्यू करते हैं यहीं से।

See to listeners, कैसा लगा आपको ये खूबसूरत सा ट्रैक? Well, to be honest, तो I feel like के वीकेंड के गानों में कुछ अजीब सी एडिक्शन होती है. सो जब कभी आप इनको सुनो, सो यू फील लाइक के दिल करता है कि बस सुनते चले जाओ. सो इसी के साथ ही अभी डीवा डायलॉग में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शल ब्रेक का. सो हम बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब और आप सभी से मुलाकात होगी कमर्शियल ब्रेक के उस बार. तब तक के लिए हमारे संग यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग जुड़े रहिए. वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा।
3: जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
4: पिशावरी डेरा।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फजा 97.1 एफएम एंड टैब पे। सो ये लिसनर्स, आप सभी सोच रहे होंगे कि आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही वीकेंड सॉन्ग्स प्ले कर रही हूँ। सो इसके पीछे कोई खास रीज़न नहीं है। एक तो रीज़न ये है कि वीकेंड पर्सनली मेरा फेवरेट सिंगर है आजकल। पहले भी मैं इनके गाने बहुत ज़्यादा सुनती थी लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही सुन रही हूँ, अब पता नहीं क्या चक्कर है। दूसरा ये कि हमारे लिसनर्स को भी वीकेंड्स के गाने बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होते हैं और प्लस काफ़ी एडिक्टिव साउंड होता है। बस यही वजह है कि आजकल कुछ ज़्यादा ही ये गाने प्ले हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई पसंदीदा गाना शो में शामिल किया जाए, उसके लिए सिंपली आप मुझे बता सकते हैं 01157100971 इस नंबर पर जाके। लिसनर, स्टार्ट करते हैं अपने टीवी डायलॉग का नेक्स्ट सेगमेंट जिसमें हम बात करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पिरेशन की, साथ ही साथ कुछ आपकी दास्तान सुनी जाती है और मैं कुछ आपको अपनी पर्सनल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ जिससे ये होता है कि जस्ट इन केस अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मायूसी चल रही है या आप किसी वजह से हैं डीमोटिवेट, वो तमाम तर डीमोटिवेशन हो जाती है ख़त्म। हमेशा की तरह आज भी आपकी होस्ट और आपकी दोस्त ज़ैनब लेकर आई है आप सभी के लिए कुछ ऐसे ही इंस्पिरेशनल कोट्स। बिना टाइम वेस्ट किए शेयर करती हूँ आपसे आज का फर्स्ट कोट। बस दफ़ा ऐसा होता है हम सभी की ज़िंदगी में, आप सभी ने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई रिलेशन हो या हो कोई हमारा गोल, वो हमें नहीं मिलती तो हम बहुत ही ज़्यादा टूट जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि इस सिचुएशन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई ओपनिंग कोट मेरी आंखों के सामने से गुजरा। मैंने सोचा कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे मैं, आप बल्कि हम सभी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सभी अचीव करना चाहते हैं और समटाइम्स हम बहुत सारे प्लान्स करते हैं लेकिन हर चीज़ हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती। ये कोड इस चीज़ से रिलेट करता है और आपको साथ ही साथ बताता है द ब्यूटी ऑफ रिजेक्शन। Our first quote says, sometimes rejection is just redirection to something better. कितनी खूबसूरत सी बात है ना कि हमारा ये quote कहता है कि बाज़ दफ़ा किसी रास्ते से इनकार होना असल में एक नाकामी नहीं होती बल्कि आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ने का कुदरत का ये इशारा होता है। इस बारे में कभी गौर किया आप सभी ने? हम जब किसी दरवाजे को बंद होते देखते हैं तो हम उसी बंद दरवाजे की जानिब देखते रहते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर वो दरवाज़ा बंद हो चुका है इसका मतलब ये है कि उस कमरे में आपके लिए कुछ मौजूद नहीं था। कुदरत आपको कभी किसी छोटी चीज़ से इनकार के लिए नहीं बल्कि आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े खूबसूरत और बेहतरीन रास्ते निकालती है। रिजेक्शन आपकी वर्थ कम नहीं करती बल्कि ये आपको सही रास्ते पर लाती है। इसीलिए जब भी ज़िंदगी में कोई ना मिले तो उदास मत हुआ करें और हमेशा ये चीज़ सोचा करें कि इसमें कोई ना कोई आपके लिए बेहतरी छुपी हुई है क्योंकि हमारे गॉड कभी भी इंसान को वो चीज़ नहीं देते जो उसके लिए बेहतर नहीं होती। वक्ती तौर पर जो चीज़ आपको फील करवा रही होती है कि ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा नुकसान है, वो दर हकीकत आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है जिसमें कहा जाता है कि अगर एक दरवाज़ा बंद हो तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। कभी भी परेशान मत हो और हमेशा ऐसा मत सोचें कि जिस तरह से आप ज़िंदगी को प्लान कर रही हैं ज़िंदगी कुछ उस तरह से चलेगी, लाइफ की अपनी डायरेक्शन है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो चीज़ आपको पसंद होती है वो आपके लिए बेटर होती है वो चीज़ आपको फौरी तौर पर मिल जाती है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके लिए बेटर नहीं होती वो चीज़ आपको नहीं मिलती। लिसनर्स, ये था हमारा आज का फर्स्ट कोट एंड आई होप कि आप सभी को ये कोट बहुत अच्छा लगा होगा और
अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सिनेरियो या सिचुएशन चल रही है जहाँ आप किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से हासिल करना चाहते थे लेकिन somehow for some reason आपको वो चीज़ नहीं मिलती, तो आपने उस सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया? 01157100971 इस नंबर पर जाके मुझे बताइए, अपने ख्यालात का इजहार करिए, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप हमसे शेयर करते हैं कि आपके दिल में दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। सो बेसिकली इससे मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुना देती हूँ जहाँ मैं बात कर रही थी लाइव एग्जाम्पल की। सो ये बात है काफ़ी ज़्यादा पुरानी, व्हेन आई वाज इन अ कॉलेज। सो उस टाइम पे इंसान का माइंडसेट कुछ और होता है, इसी तरह से कुछ मेरा माइंडसेट भी कुछ और था। और मुझे शुरू से लगता था कि मुझे आईटी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए या फिर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, क्योंकि आई फील लाइक कि मैं टेक्नोलॉजी को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ। सो होता है ना कि हर एक इंसान ने खुद को लेकर बहुत सारी इमेजिनेशंस की हुई होती हैं, इंसान के बहुत सारे प्लान्स होते हैं। कुछ इसी तरह से मेरे भी प्लान्स थे कि मैं आईटी में जाऊँगी या फिर जाऊँगी कंप्यूटर में, बट फॉर सम रीज़न सम सिचुएशंस कुछ इस तरह से होगी कि जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो मुझे आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं मिला। वक्ती तौर पर मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा फील हुआ कि ये क्या, मैंने जो सब सोचा था कुछ भी उस तरह से नहीं हो रहा, जिंदगी कितनी बोरिंग हो चुकी है, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाऊँगी। और वाकई कहीं ना कहीं मैं भी डीमोटिवेट हो गई थी और ज़िंदगी उदास उदास लगना शुरू हो चुकी थी। और इंसान सोचता है ना कि जो सब मैंने सोचा था वो तो नहीं हो रहा, तो अब आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई मेरे साथ। एंड देन मुझे आईटी में सीएस में एडमिशन नहीं मिला और मुझे मिल गया एडमिशन एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस में। उस वक्त तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस कहाँ कहाँ सीएस, मेरा हुआ अब तो आईटी में जाना था, ये क्या। इस तरह की डिफरेंट थॉट्स मेरे माइंड में आने लगी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था सो हो चुका। मैं आ गई एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज में। उस वक्त तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज इज़ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और आई फील लाइक कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट रही, इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, मेरे इंटरेस्ट डेवलप हुए और मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया। अब कभी कभी मैं बैठ के सोचती हूँ कि जस्ट इन केस अगर मैं आईटी में होती तो क्या मैं ये सब चीज़ें अचीव कर पाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी प्लानिंग थी वो बेस्ट प्लानिंग नहीं थी, एंड गॉड्स प्लानिंग वही बेस्ट होती है। ये एक मेरी लाइफ एग्जाम्पल थी जिससे मैंने आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से जो हम सोचते हैं वही परफेक्ट नहीं होता, बल्कि जो कुदरत हमारे लिए सोचती है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मुतमिन हूँ। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो घबराने की कोई बात नहीं, बल्कि आप वक्त को और हालात के साथ खुद को ढालने की कोशिश करें। आपको कुछ टाइम बाद ज़रूर रियलाइज़ होगा कि यही आपकी लाइफ के लिए बेस्ट डिसीजंस थे। लिसनर्स, हमने की काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन की बात। अब इसे मोटिवेशन के बीच में थोड़ा सा म्यूजिक मस्ती तो होना चाहिए। आइए मिलकर सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक है थोड़ा सा रोमांटिक, मिलकर सुनते हैं ट्रैक के उस पार। अगेन कंटिन्यू करते हैं आज का नेक्स्ट कोट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आप सभी की होस्ट वन एंड ओनली आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं डीवा डायलॉग सिर्फ और सिर्फ रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM एंड टैप पे। सिर्फ लिसनर, जैसा कि है आप सभी को मालूम कि रेडियो फ़ज़ा है वो वाहिद प्लेटफॉर्म जहाँ आपको मिलती है इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, साथ ही साथ इंटरटेनमेंट का टूज। सो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरह के वही टॉपिक्स शो में शामिल किए जाएँ जो कि हैं मेरे सभी लिसनर्स को पसंद। सो दी लिसनर्स, आज भी मैं लेकर आई हूँ सभी डीवास के लिए कुछ एंटरटेनमेंट से जुड़ी न्यूज़। सो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मार्वल सीरीज़ की न्यू मूवी द स्पाइडरमैन फाइनली होने जा रही है रिलीज़, और जहाँ तक मैंने सुना है कि स्पाइडरमैन के साथ बहुत सारे लोगों की मेमोरीज जुड़ी हैं, क्योंकि मोस्टली सो इस मूवी को तो हमारे बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू द अडल्टहुड। और अभी भी जितने भी हैं स्पाइडरमैन के फैंस, मोस्टली वही लोग हैं जो कि टीन एज से इस मूवी को देखते चले आ रहे हैं। सो जैसा कि मैंने देखा कि आजकल आसपास काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है स्पाइडरमैन मूवी से रिलेटेड, सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये न्यूज़ सभी लिसनर्स के साथ शेयर किया जाए। सो फाइनली द स्पाइडरमैन हैज़ अराइव्ड ऑन 31st July 2026। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखी ये मूवी, सो इट्स द टाइम, इट्स द मोमेंट, लाजमी जाके इस मूवी को देखें, क्योंकि जितना सुनने में आ रहा है कि इस मूवी की कास्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड द प्लॉट ट्विस्ट, स्टोरी, ईच एंड एवरीथिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक्साइटिंग और फिक्शनल है। वैसे वेल टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो अभी तक मैंने भी पुरानी सभी मूवीज़ कम्प्लीट नहीं की। सो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा हाइप जो मैंने आसपास इर्द गिर्द देखी, तो मैंने सोचा कि आखिर कोई ना कोई बात तो है इस मूवी में, तभी बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हुए हुए हैं। सो मैंने सोचा है कि आज से मैं भी टाइम निकाल के 31st से पहले पहले तमाम तर मूवीज़ को कर लूँगी कंप्लीट और फिर शेयर करूँगी आपसे रिव्यू के कैसी लगी मुझे द ओल्ड एंड द न्यू स्पाइडरमैन मूवी। और साथ ही साथ मैंने सोचा कि जहाँ इतनी हाइप क्रिएट हो रही है और सभी जा रहे हैं सिनेमा इस मूवी को देखने, तो क्यों ना जाया जाए। सो इसीलिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान कर रही हूँ। सो आपको भी चाहिए कि आप भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ प्लान, क्योंकि डेली बेसिस पर हमें इस तरह से घूमने फिरने का मौका नहीं मिलता, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट का भी। सो ये बहुत अच्छा मौका है कि साथ ही साथ फ्रेंड्स हैंग आउट भी हो जाएगा और इतनी अच्छी फिक्शनल मूवी भी देखने का मौका मिलेगा। सो आप भी ज़रूर देखिएगा और मैं भी ज़रूर देखूँगी, एंड देन फिर आप मुझसे अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा और मैं आपसे अपना रिव्यू शेयर करूँगी।

सोचिए लिसनर्स, इसी के साथ ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, उससे मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी से पूछा जाए। तो आपके ख्याल में क्या मूवी देखने के लिए सिनेमा जाना एक बेटर ऑप्शन है, या फिर आप उन लोगों में से बिलोंग करते हैं जो ये सोचते हैं कि घर में अपनी पर्सनल स्पेस में आराम सुकून से मूवी देखी जाए। वेल, मैं बहुत ही ज़्यादा कम बाहर जाती हूँ और मूवीज़ वगैरह भी मैं जितनी भी देखती हूँ वो सभी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल होती हैं, सो इतना कभी जाने का बाहर दिल भी नहीं करता। लेकिन फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू वॉच स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू मूवी, क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी आ रही हैं। सो ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे उनको देखने की भी है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने देखी होगी स्ट्रेंजर थिंग्स। सो आप इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि स्ट्रेंजर थिंग्स में सैडी सिंह का करेक्टर कितना ज़्यादा अमेजिंग था। सो बहुत सारे फैंस तो उनको देखने जा रहे हैं, बाकी के जितने भी फैंस हैं वो हैं स्पाइडरमैन के ओरिजिनल फैन। सो देखते हैं, लेट्स सी कि बाकी तमाम तर सीरीज़ की तरह, मूवीज़ की तरह ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर किस तरह से काम करती है।

वेल लिसनर्स, ये तो हो गई एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर। अब जरा बढ़ते हैं आगे किचन की जानिब। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि टीवा डायलॉग का ये सभी सबसे ज़्यादा बेस्ट सेगमेंट होता है, जहां हम बात करते हैं खानों की, पकवान की, कुकिंग की, और साथ ही साथ कुछ इस तरह

खटे खानों की, स्पाइसी फूड की। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा सा चेंज किया जाए और आज हम कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो कि हो मीठी, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स भी हैं जो कि मीठे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट लवर हैं। सो जितने भी लोग जो चॉकलेट लवर हैं उनके लिए ये रेसिपी होने जा रही है एक हेवन। सो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपसे शेयर करती हूँ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। सो बेसिकली ये कोई ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, इट्स अ रेसिपी जो कि मैंने इटसेल्फ खुद क्रिएट की है। सो देखते हैं कि आप सभी को ये किस तरह की लगती है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ बहुत क्रीमी होती है और बहुत जल्दी बन जाती है, और एज सच आपको कोई भी डिफ़िकल्ट किस्म के इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए होते। सो सबसे पहले मैं आपसे शेयर करती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। सो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोई भी बिस्किट्स। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ बिस्कोनी बिस्किट्स, ठीक है। आप कोई भी ऐसे बिस्किट यूज़ कर सकते हैं जो कि नेचुरली हों, कि गंदम से बने हों, ठीक है। तो आप कोई भी किसी भी तरह के बिस्किट्स सुपरमार्केट से जो आपको इजीली आसानी मिल जाएँ वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक पैकेट बिस्किट्स ले लें, ठीक है। साथ ही साथ इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए फ्रेश क्रीम 1 and 2 cups। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वान्टिटी में बना रही हैं। सो जो मेरे पास यहाँ बिस्किट्स का पैकेट है, सो ये एक फुल मील पैकेट है, तो इसलिए मैं यूज़ करूँगी 2 cups क्रीम। अगर आप कम बिस्किट से बना रहे हैं तो आप कम क्रीम यूज़ कर लीजिएगा। सो इट्स टोटली योर चॉइस। साथ ही साथ हमारा अगला इंग्रेडिएंट है चॉकलेट। यहाँ पे मैं ड्राई चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं उसे बाद में मेल्ट कर लूँ। अगर आपके पास मेल्टेड चॉकलेट मौजूद है सो आप 1 cup उसे यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप भी मेरी तरह ड्राई चॉकलेट यूज़ कर लें, उसे अच्छे से मिक्स करके गर्म कर लें।

और हमारा लास्टली इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, जो कि है फ्रेश आइसक्रीम। वेल, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं गार्निशिंग की। सो इस रेसिपी को मज़ीद टेम्पटिंग डिलिशियस बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक और बिस्किट। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे चॉकलेट चिप पसंद है, क्योंकि चॉकलेट चिप कुकीज़ बहुत ही ज़्यादा यमी होते हैं, चॉकलेटी होते हैं, और हमारी रेसिपी भी चॉकलेट लवर्स के लिए क्रिएट की गई है। सो आई फील लाइक कि अगर मैं इसको अच्छी तरह से क्रश करके ऊपर से ऐड करूँगी तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा और काफ़ी ज़्यादा चॉकलेटी टेस्ट होगा। सो मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सा भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। बाकी इस रेसिपी में हम किसी भी किस्म का मीठा नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं, बिस्किट्स में भी है मीठा और चॉकलेट चिप कुकीज़ में भी काफ़ी हद तक मीठा होता है। सो आपको किसी मज़ीद चीनी वगैरह की ज़रूरत नहीं। सो वैसे तो इस रेसिपी का ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन अगर आप में से सभी लोगों ने थ्री मिल्क केक ट्राई किया है तो आप रिलेट कर सकते हैं कि इट्स मोर लाइक अ थ्री मिल्क केक, बट इट्स मोर चॉकलेटी और इसमें क्रीम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम है। सो ये थे वो सब इंग्रेडिएंट जिनसे हम बनाएंगे ये ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मीठा। सो इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए, एंड आई फील लाइक आप सबने नोट कर लिए होंगे, लेकिन जस्ट इन केस कुछ आपसे मिस हो जाता है, सो 01157100971 आप इस नंबर पे जाके मुझे टेक्स्ट करके सिंपली पूछ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, कौन सा इंग्रेडिएंट आपसे मिस हो गया। सो मैं आपको बहुत अच्छे से प्रॉपरली गाइड कर दूंगी। सो जब तक आप नोट करते हैं इन सभी इंग्रेडिएंट्स को और किचन में जाकर चेक करते हैं कि क्या आपके पास ये सभी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं या नहीं, या फिर आप ये सोचते हैं कि क्यों ना सुपरमार्केट जाकर ये तमाम सारे इंग्रेडिएंट्स ले आए जाएं, तब तक सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक। ट्रैक के उस पर फिर होती है आपसे गपशप और फिर करते हैं इस रेसिपी को कम्प्लीट।

और उसके साथ साथ आप मुझे गूगल पर सुन सकते हैं rediffuzaar.co.uk के आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको किसी भी तरह का प्रोग्राम सुनना हो, किसी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सवाल वो आपको वहाँ से मिल जाएगी। प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं Rediffuzaar 97.1 FM के नाम से। साथ ही में बताइएगा कि जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं कैसा गुजर रहा है दिन, और ड्राइव करते हुए कैसा लग रहा है, ड्राइव करते हुए ट्रैक प्ले करवाना चाहे तो करवा सकते हैं, बट ड्राइव जो एहतियात से कीजिएगा, बी सेफ बी केयरफुल। और जो खवातीन मुझे घर बैठी सुन रही हैं, उम्मीद है कि आप मुझे काम काज करते वक्त ही सुनती होंगी, और क्योंकि लेडीज़ जो हैं वो ज़्यादातर काम काज में ही बिजी रहती हैं, और घर की जो खवातीन होती हैं ना ख़ासतौर पर उनका टाइम गुजरता है घर के काम काज कर करके। खैर रेसिपी अगर दोपहर के खाने के बारे में सोच रहे हैं तो अगर कोई रेसिपी समझ में नहीं आ रही, चाहते हैं कोई रेसिपी मेरे तरीके से बनाई जाए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, या फिर कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि आपकी बताई हुई प्रोग्राम में शामिल की जाए तो बाकी तमाम लिसनर्स तक मैं उनको पहुँचा दूँ तो फिर मैं ज़रूर करूँगी। प्रोग्राम में हम आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होती है कम्युनिकेशन, और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। वो इंटरटेनमेंट को लेकर चलते हैं आप हमारे साथ ही को ठीक 2 बजे तक। और जो लोग निकल चुके हैं ऑफिस की तरफ, और ऑफिस में ज़्यादा सतर्क पड़ चुकी है बॉस की डांट, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बस आप ये कर लीजिएगा कि आप अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं और वहाँ पर जाकर आप रेडियोफ़ज़ा का ट्यून कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी तन्हाई का साथी सिर्फ और सिर्फ 97.1 FM ही है।

और उसी के साथ साथ आज मेरे पास जो मैं हमेशा प्रोग्राम में ट्रैक प्ले करती हूँ, उस प्रोग्राम के शुरू में आज मेरे पास उसकी फरमाइश आन पहुँची है कि आज मेरी मर्जी का ट्रैक प्ले किया जाए। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ। हमेशा तरह प्रोग्राम एक छोटा सा टॉपिक शामिल करवाया जाता है, बड़ा भी कुछ दिन से जो हम रैंडम बातें करें, जो जो मैसेज मुझे तक पहुँच रहे हैं उनको प्रोग्राम में शामिल करके थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। पर अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द 7.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, झूठ पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी चीज़ से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मतलब मैं इस बात पे एग्री हूँ कि जिंदगी में इंसान को कभी ना कभी एक ठोकर लगती है, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में अपने पाँव पे खड़ा हो पाता है। हो कहते हैं ना कि कौन सीखता है सिर्फ बातों से, हर किसी को एक हादसा जरूरी है।
1: खत्म है उल्फत की तुझ पर, खत्म है उल्फत की तुझ पर पर्दादारी।
0: हर कामयाब इंसान के पीछे कोई ना कोई ऐसा राज जरूर छुपा होगा जो उसने सबसे छुपा के रखा है, क्योंकि जिंदगी में जो है ना वो ऊंच नीच जाती रहती है।

एक छोटी सी नज्म थी, मेरी गज़ल है कि नज्म है, मैंने सोचा था कि इसको प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूँगी, कि मंजिल से आगे बढ़ नई मंजिल तलाश कर, दरिया तुझे मिले तो समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर।

0: सवाल जब तक आप हमें बताएंगे अपने मनपसंद ट्रैक, तब तक आप सुनेगा एक और छोटी सी फरमाइश का, और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आएगा। साथ दीजिएगा हमेशा की तरह, और साथ होने का एहसास भी दिलाएगा। अभी चंद ही मिनट बाद जो है मेरे आपके दरमियान एक छोटी सी ब्रेक का भी वक्त हुआ जाएगा। सवाल हम कोशिश ही करेंगे कि उस फरमाइश को पूरा कर दें, क्योंकि वही बात आ गई कि हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। मेरा सबसे बड़ा ये जो होता है ना काम, कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी कोशिश ही रहती है कि मेरी वजह से किसी के आंखों में आंसू ना आए। खैर, इसीलिए मैंने अपना लास्ट सेगमेंट जो है ना वो म्यूज़िक का रखा होता है, कि मैं अगर इस दौरान जो है आपके साथ उस तरह के ट्रैक नहीं शेयर कर पा रही या आपकी फरमाइश उस तरह नहीं पूरी कर पा रही, तो मैं वो जो लास्ट सेगमेंट है ना उसमें आपकी फरमाइशों को जो है वो ढेरों फरमाइशों को पूरा कर दूँ। वेल, जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा। ड्राइव करते कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो मुझे लाजमी बताइएगा, मैं ज़रूर प्ले करूँगी। और अभी आप सब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपने हमारा साथ देना है ठीक ठीक 2 बजे तक।
1: है लेकिन तेरी नजरों का जो जाम पी ले,
0: तेरी नजरों का जो जाम पी ले उम्र भर वो संभलता नहीं है। मतलब क्या ही लाइन है यार इस गाने में। मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं इस बात पे डिस्कस होती है कि ट्रैक्स के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे अब तलहा अंजुम के ट्रैक देखती जाए, तलहा अंजुम ने एक इंटरव्यू में आके बोला था कि मुझे जब एक तरफा मोहब्बत होती है तो मैं ट्रैक लिख देता। मतलब माशाल्लाह से हर बंदा ही टैलेंटेड है, कोई शायरी लिख देता है, कोई ट्रैक लिख देता है। हर वाला अभी के लिए जो है प्रोग्राम में छोटी फरमाइश को पूरा कर देते हैं जो हमारे पास फरमाइश मौजूद है। सो स्टे ट्यून फजर 97.1 FM एंड ऐप। मिलते हैं इस ट्रैक के और एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार। ट्यून करके रखिएगा फजर 97.1 FM को एंड ऐप को।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंगम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो, यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंगम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंगम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H।

जी हाँ, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सलो राज की। सारे दिन दिया गल्ला बैके दसा मैं तेनु, तू मैनू भुले ना करे, मैं ना भुला तेनु। सवाल उसी के साथ साथ प्रोग्राम में जो है मैंने एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था और एक फिर कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी। अब उसी के साथ साथ मेरा आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। अभी जो है वो प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ मैं।

ने सोचा कि बैकग्राउंड म्यूजिक को क्यों ना चेंज कर दिया जाए, यानी कि BGM को हटा कर जो है हम कुछ ट्रैक प्ले कर देते हैं ताकि आप ट्रैक्स को भी सुनते रहें और साथ साथ हमारी आवाज भी सुनते रहें। सर, बात कुछ इस तरह से करने वाली हूँ कि माफ़ी के बारे में बात होने वाली है कि माफ़ी मांगना कमज़ोरी नहीं, किरदार की मजबूती है। सो ये है हमारा टॉपिक और इसके हवाले से डिस्कस करूँगी कि अक्सर लोग जो है ना समझते हैं कि सॉरी कहना कमज़ोरी की निशानी होती है या माफ़ी मांग लेना कमज़ोरी की निशानी होती है। अब तो सबसे पहली बात कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ से बहुत ख्याल करें कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। कहते हैं कि जब आप किसी पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाते हैं ना, तो अगर वो इंसान वैसा ना भी हो या उसने वो किया भी ना हो, तो जब तक वो उस चीज़ को कर नहीं लेता ना, तब तक आपको उस चीज़ पे गुनाह मिलता रहता है। तो कोशिश ये करें किसी पे झूठा इल्ज़ाम ना लगाएं। सो अक्सर लोगों को ये लगता है कि सॉरी करना जो है कमज़ोरी की निशानी होती है, जबकि हकीकत में अपनी गलती तस्लीम करने वाला और माफ़ी मांगने वाला ही एक मजबूत शख्स कहलाता है। अब माफ़ी जो है वो रिश्तों को जोड़ती है, दिलों से नफ़रत ख़त्म करती है और इंसान को अंदर से सुकून देती है। जो लोग वक्त पर माफ़ी मांग लेते हैं वो अपनी इज्जत कम नहीं करवाते उस चीज़ में, बल्कि जो लोग देर से माफ़ी मांगते हैं ना, वो चीज़ जो है ना वो काफ़ी लेट हो जाती है। और देर से माफ़ी मांगने की जरूरत भी नहीं, अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया तो उसको राज़ी किए बगैर अपने पास से तो कम से कम जाने ही ना दें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। अभी सांस चल रही है, कल का पता नहीं, सो अगले मिनट का ही नहीं पता, बल्कि सो कोशिश ये करें कि अगर किसी भी तरह की बहस होगी, किसी तरह की नाराज़गी हो गया, तो उसको फ़ौरन से जो है ना वो हल करें, फ़ौरन से उसको जो है राज़ी कर लें। आप मुझे बताइएगा, मेरे से ना आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी किसी से दिल से माफ़ी मांगी है या किसी को दिल से माफ़ किया है? तो ये दो सवालात आपके अपने दरमियान रखती हूँ, आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। और अगर ऐसा किया भी है तो उस तजर्बे ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाई है, मतलब उस तजर्बे से आपकी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चेंजिंग आई है जो आपको लगता है कि आपने जब वो माफ़ी मांगी तो आपके लिए वो मोमेंट या वो वक्त या वो चीज़ बहुत ख़ास थी कि उसने आपको अंदर से बदल के रख दिया। हर खामोश इंसान कमज़ोर नहीं होता, इस चीज़ का ख्याल रखें। हर खामोशी के पीछे एक कहानी होती है। कुछ लोग जवाब देने के बजाय सुकून और आराम से जो है काम लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो जल्दबाजी कर जाते हैं। और हमारे माशरे में जो है ना ज़्यादा बोलने वाले को जो है ना वो चोर ही कहा जाता है, मतलब दोनों को यही कहा जाता है मेरे ख्याल से। अगर कोई बोल रहा है तो वो चोर है, और अगर कोई खामोश है तो वो भी चोर है, यानी कि दोनों सूरतों में जो है ना अगला इंसान गलत ही है। तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना ओ ज़ालिमा। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसा आपके सामने खड़ा है जिसके सामने आप खामोश हो गए, तो वो आपको समझ आएगा कि आपकी खामोशी के पीछे वजह जो है वो सही होने की है या गलत होने की है। सो कोशिश ये करें कि एक दूसरे के साथ बना के रखें। वक्त कभी वापस नहीं आता, वक्त ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत है, जो लम्हा जो है गुजर जाए वो दोबारा नहीं मिलता। सो यही करें कि जो टाइम है उसको हंस के गुजारें, जो वक्त साथ रह रहे हैं उसको सही से स्पेंड करें। रिश्तों में एतमाद ज़रूरी रखें, मोहब्बत से ज़्यादा रिश्तों को भरोसा जो है मज़बूत बनाता है। और मैं हमेशा अक्सर ये बात करती हूँ कि हर रिश्ते के पीछे जो है ना मतलब मोहब्बत वगैरह कुछ भी नहीं होती, रिश्ते के पीछे एक वो इज़्ज़त होती है। इज़्ज़त जब तक है तब तक सब कुछ है, इज़्ज़त नहीं है तो रिश्ता किसी काम का नहीं है। आप हर रिश्ते को लेकर शुक्रगुजार हो सकते हैं, हर रिश्ते को लेकर शुक्र अदा कर सकते हैं। शुक्रगुजार से ज़िंदगी कैसे तब्दील होती है, जो इंसान अपनी मौजूदा नेमतों पर शुक्र अदा करता है ना कि जो चीज़ें नहीं हैं उसके लिए जो है रब से बहस करता है, तो वो इंसान जो है ना शुक्र है। और वो ज़्यादा जो है ना वो इंसान फिर मतलब ये नहीं कि अल्लाह ऊपर वाली की ज़ात जो है वो उसको खुश नहीं रख पाएगी, लेकिन वो एक बात आ गई ना कि जो तुम्हारे पास है पहले तुम उसके लिए खुश हो, जो नहीं है उसके लिए दुख हो, कि इन खुशियों को बर्बाद मत करो। कामयाबी जो है वो किस्मत से नहीं बल्कि मुस्तकबिल मिजाजी से मिलती है। सो छोटी छोटी खुशियों की खुशियां ही एक दिन जो है बड़ी कामयाबी बन सकती हैं। सो कोशिश यही करें कि आपके जो आज दिन में आने वाली खुशियां उनको आपने कैसे इंजॉय करना है, उनको लेकर आपने कैसे कैरी करना है, ये आप पर डिपेंड करता है।
سو ابھی مجھ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا گیا تھا کہ کیا خاموش رہنا ہمیشہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں. سو میں یہی بولوں گی کہ ضروری نہیں ہے. کبھی کبھار جو ہے وہ کسی جگہ پہ بولنا پڑتا ہے, کبھی کبھار خاموش بھی رہنا پڑتا ہے. ہر جگہ بولنا ضروری بھی نہیں ہوتا, لیکن ہر جگہ خاموش رہنا بھی جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتا. تیرے سنگ سنگ رہا ساری, کیونکہ بہت سی ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں, بہت سی ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ

सो किसी को चेंज करने से पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि दूसरों की खुशी में खुश होना ही ज़रूरी है। हसद की बजाय दूसरों की कामयाबी पर खुशी महसूस करना, ये जो है असल इंसानियत है। और मेरे ख़्याल में जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो एक टाइम आता है कि अगला इंसान भी आपकी खुशी में खुश ही होगा। और किसी की खुशी में खुश होने से कुछ होता नहीं है। अगर वो इंसान भी ज़िंदगी में खुश है तो इसमें उसने बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी तकलीफें, बहुत ऐसे मरहले से गुजर गया है जहाँ से उसको लगा होगा कि वो कभी गुजर ही नहीं सकता। सो अगर वो अपने दुखों का हकदार होता तो खुशियों का हकदार भी वो अकेला ही है। अभी मुझे कुछ मिनट पहले जो है ना कुछ बेर के टाइम में जो ना मेरे पास नंबर पे एक मैसेज रिसीव हुआ कि क्या हर रिश्ते को दूसरा मौका देना चाहिए या नहीं। सो मैं अपना तजुर्बा बताऊँ तो वो कहते हैं ना कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि हज़रत अली का भी फरमान है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। हर रिश्ते में माफ़ी और दूसरा मौका देना ठीक है, या कुछ रिश्तों को वहीं ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ पर आपको लगे कि अब ये इंसान ऐसा नहीं करेगा। तो फिर शायद वाली बात है कि वो कभी उस चीज़ को लेकर ना चले, लेकिन कभी कभार जो है ना हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम अगर किसी को दूसरा मौका दे देते हैं तो फिर वो दोबारा से वही हरकत करे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, और इस चीज़ का जो है ना पता भी लेट ही चलता है, इतनी जल्दी अंदाज़ा भी नहीं होता।

क्या माफ कर देना भूल जाना भी होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने माफ तो कर दिया मगर भूला नहीं, तो क्या वाकई माफ करने का मतलब सब कुछ भुला देना होता है या नहीं, या माफी जो है वो सिर्फ दिल से नफरत और गुस्सा निकालने का नाम है। इसके बारे में मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन अपने बारे की अपनी तरफ से एक राय देती हूँ कि जब मैं किसी को माफ़ कर देती हूँ तो मैं दिल से ही माफ़ कर देती हूँ, फिर मैं किसी भी तरह का शिकवा नहीं दिल में रखती। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माफ़ करने के बाद भी कहते हैं कि उस टाइम पर ये किया था, उस टाइम पर ये किया था। सो मैं उनमें से नहीं हूँ, और आपसे भी ये बोलूँगी कि आप भी उन लोगों में से ना ही बने। माफ़ करना जो है ना, दरअसल अपने दिल का बोझ हल्का करने का नाम है, ना कि हर तकलीफ़ को या बर्दाश्त से मिटा देना। यानी बाज़ुकात जो इंसान जो है ना, किसी को माफ़ तो कर देता है, लेकिन उसे उस वाक़े को भूल नहीं पाता, क्योंकि वो तजर्बा उसकी ज़िंदगी का एक अहम सबक बन जाता है, और अहम सबक उसको दे जाता है। और ये अच्छी बात है, ज़िंदगी में जो है ना, थोड़ी बहुत ठोकरें जो है वो लगनी ही चाहिए। माफ़ी का मतलब ये नहीं कि आप दोबारा खुद को उस तकलीफ़ में डाल दें। बाज़ुकात आप ये भी मतलब माफ़ करने का एक भी तरीका है कि आप दोबारा उस आने वाले टाइम से जो है मुहतात रहें। बाज़ुकात जो है माफ़ करना ज़रूरी होता है, लेकिन मुनासिब जो है ना हद तक कायम रहना भी इतनी ही ज़रूरी है। मतलब आप अगर किसी पे दोबारा से उस तरह का ट्रस्ट कर तो नहीं पाते, लेकिन अगले को शायद ये लगता है कि कर लिया, लेकिन वही बात आ गई कि अगला इंसान भी मुहतात रहता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आए दोबारा ये गलती नहीं करनी जो मुझसे पहले हो चुकी है। हम अक्सर जो है ना ये कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देने से जो है वो टूटे हुए एतमाद जो है वापस आ जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक बार रिश्ते में दरार आ जाए ना, तो रिश्ता जो है वो दोबारा उस पोजीशन पे तो नहीं आ सकता। रिश्ता शीशे की तरह होता है, अगर उनमें दरार आ जाए ना तो उन्हें जोड़ा तो जा सकता है, मगर बाज़ुकात जो है ना वो दरारें हमेशा नज़र आती हैं। और मेरा अपना ये पर्सनली आइडिया है कि एक दफ़ा जो है ना भरोसा उठ जाए तो फिर इंसान दोबारा उस चीज़ पे या उस शख्स पे कभी यकीन नहीं कर पाता, और अगर कर भी लेना तो वो फिर इस डर में रहता है कि कहीं ये ना हो जाए या कहीं वो ना हो जाए, कहीं इस जगह पे आके मुझे इस पर एक बार फिर से वही चीज़ें मिल जाए जो मेरे साथ पहले हुई थी। तो फिर आप इट बैन करता है कि आप उसको माफ़ तो करें, लेकिन उस पर उस तरह का यकीन ना करें जिस तरह का आप यकीन उस पर पहले करते थे।

0: उसे किस्मत का फैसला समझकर हम आगे बढ़ जाते हैं।
1: सुन लिया?
2: सवाल इसी के साथ साथ गपशप का सिलसिला जारी करेंगे। अभी जो है वो प्रोग्राम एक छोटी सी अनाउंसमेंट को भी शामिल कर देते हैं और फिर उसके बाद एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश है उसको भी पूरा कर देंगे।

0: सर अभी जो है ना मेरे पास जो छोटी सी वो आ गई है ना फरमाइश, उसको भी लाजमी मैं पूरा करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले जो है एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ।
1: Childhood vaccinations give your children the best protection and prevent over 5,000 deaths each year in England. Childhood infections can cause serious illness, hospitalization, and lifelong disabilities. Childhood infections like measles and whooping cough spread easily in our communities. If your child isn't vaccinated, they're not protected. All childhood vaccinations offered by the NHS have been used in millions of children worldwide and have an excellent safety record. It's important that vaccines are given on time for the best protection. But if your child has missed a vaccine, contact your GP to catch up. Are your child's vaccines up to date? Check their red book or speak to their GP practice. For more information, visit nhs.uk/childhoodvaccinations.
0: जी हाँ, तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर किया, इसके साथ आपके साथ मुलाकात है, ये भी एक छोटे से ट्रैक की मेरे पास फरमाइश मौजूद है, उसको पूरा करते हैं हदीका कियानी की आवाज़ में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर 107.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोर आज की समझी के साथ साथ। प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक इस बार रही आपसे मुलाकात।

सुबोध जी के साथ साथ मेरे से एक छोटा सा क्वेश्चन किया गया है, मतलब मुझसे पूछा गया कि भाई मैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा सकती हूँ, सोशल मीडिया का असर क्या ये ज़्यादा यूज़ करने से क्या नुकसान होता है या नहीं होता। देखिए इसका ज़्यादा ये है कि सोशल मीडिया का अक्सर वाकई एक नुकसान भी हो जाता है, क्या सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो ये इंसान के हथियार में होता है, हमारे हथियार में, कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। हम उसको अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बुरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। दुनिया भर की जो है वो मामलात और ख़बरें जो है जल्दी मिल जाती हैं सोशल मीडिया से, अगर इस चीज़ का फ़ायदा देखा जाए तो। दोस्तों और रिश्तेदारों से रब्ता आसान होता है और लोग जो है ना वो अपनी स्किल्स देखकर काम और बिज़नेस के जो है ना मुकाम हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके नुकसान भी बहुत से हैं। नुकसान अगर आपको बताए जाए तो वो भी मैं आपको बताऊँगी अपने तरीके से, जो जिस चीज़ का मुझे इल्म है। अगर हम सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सोशल मीडिया के फ़ोन की बात की जाए, क्योंकि फ़ोन और सोशल मीडिया के लिए जब फ़ोन का यूज़ करेंगे तभी हम सोशल मीडिया यूज़ करेंगे। सो ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वक्त ज़ाया कर सकता है आपका, दूसरों से मुकाबला करने की वजह से जो है वो स्ट्रेस या फिर आपकी सेल्फ या फिर आपकी हेल्थ पर जो है ना वो असर हो सकता है, गलत असर हो सकता है, आपकी सेहत ख़राब हो सकती है ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर करके। गलत या झूठी खबरें जो हैं वो तेज़ी से फैला सकती है, और प्राइवेसी और ऑनलाइन का जो ये सीन है ना ये जो है ना ख़त्म हो जाता है। खैर बट हम ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आजकल यूज़ करना सबको ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया जहान की खबरें उस पर मिलती हैं, और फिर उसके बाद हम अपने बहुत से काम सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, और सोशल मीडिया से हम पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से। हम हर चीज़ को हम अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम किसी भी तरह की बात करते हैं ना तो ये बात की जाती है कि हम इसको नेगेटिव ही क्यों सोचें, हम इसको पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। सो अगर हम इस चीज़ का इस्तेमाल करें तो हम इसको अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे दौर में तो ये होता था कि कहा जाता था कि छोटी उम्र में जो है फ़ोन यूज़ नहीं करने, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करने। आजकल के जो बच्चे चल रहे हैं ना, खाना भी खाना है तो फ़ोन यूज़ करते हुए खाना है, और कुछ भी कोई भी एक्टिविटी करनी है ना तो सामने फ़ोन या लैपटॉप जो है उस पर कार्टून ज़रूर लगे होने चाहिए। बट हमारी दफ़ा होता था कि हमें तो टीवी भी देखना पड़ता था ना, तो टीवी देखने से वो भी टाइमिंग लगी होती थी कि इतने टाइम पे तुम देखोगे, इतने टाइम पे तुम देखोगे, इस तरह होता था। और फिर उसके बाद टाइम से सुला भी दिया जाता था, अगर नींद नहीं भी ना आ रही तब भी सोना ही सोना है भाई, जो मर्जी हो। लेकिन अब का जो दौर आ गया ना, बच्चे फ़ोन देखते देखते सोते हैं और देखते देखते ही उठते हैं। खाना खाना है, फ़ोन यूज़ करना है, खाना कुछ भी करना है, कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो ये हमने खुद बच्चों को बुरी आदत पर डाल दिया। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी फैमिली में भी ये बात बहुत करती हूँ कि बच्चों को जो है ना वो फ़ोन से दूर रखना चाहिए। बचपन में तो खैर रख ही रखे, बड़े होकर भी जो है, बड़े होकर तो खैर फ़ोन देना बनता ही है, लेकिन बचपन में जो है ना बच्चों को उस चीज़ से दूर रखे। एक तो नज़र भी वीक हो जाती है बच्चों के, पता भी नहीं चलता, और दूसरा ये कि फिर वो एक गंदी आदत पड़ जाती है ना, फिर वो सबके सामने तंग करना इस तरह का सीन हो जाता है। सो कोई आपके बच्चों के बारे में बात करे इससे पहले आपको खुद ही अपने आप पे और अपने बच्चों पे कंट्रोल रखना चाहिए। खैर वो उसी के साथ साथ अभी जो है ना वो प्रोग्राम में मेरे पास एक फरमाइश थी ट्रैक की, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए, ताकि आप ये मत बोलें कि सबराज बोली जाती है लेकिन हमारी फरमाइशों को जो है वो प्रोग्राम में हरगिज़ शामिल नहीं करती। बोला ये सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक को इस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड 107.1 FM एंड ऐप।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं सरोराज की। हमेशा की तरह मेरा आपका साथ रहता है ठीक है ठीक 2 बजे तक। मतलब अभी उसी के साथ साथ वक्त काफ़ी कम रह चुका है और हमारा अगला सेगमेंट जो स्टार्ट होने वाला म्यूजिक का होने वाला है, लेकिन उससे पहले जो है मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश और प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक का वक्त भी हुआ जाता है। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन मेरी और आपकी होती है, कम्युनिकेशन और होती है मिलकर इंटरटेनमेंट। अगर आप कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। जिन नए लोगों ने आज अरबी वजन 97.1 FM को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकाकार बड़ा ही आसान सा है, 01157100971। इस खूबसूरत से नंबरों कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलोर आज की जो उसी के साथ साथ एक छोटी सी मशहूर ब्रेक हाल हो चुकी थी। मशहूर ब्रेक उस बार ही आपसे मुलाकात। अभी हमारा जो लास्ट सेगमेंट स्टार्ट, फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है म्यूज़िका। म्यूज़िका मैंने लास्ट सेगमेंट रखा होता है ताकि बाकी जो फरमाइशें मैं नहीं पूरी कर पाती वो मैं सेगमेंट में पूरी कर दूँ, आपकी फरमाइशों को प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। और बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का, उन नई समातों का जिन्होंने आज रबी फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है। प्रोग्राम में शामिल होइएगा, अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाइएगा। शामिल होने का तरीकाकार बड़ा ही आसान सा है, 01157100971 ये सब सोचे नंबर कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। ना सिर्फ आप हमारे हम तक अपने मैसेजेस पहुंचा सकते हैं बल्कि आप हमारे साथ लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी आवाज़ भी हमें सुना सकते हैं। बस उससे पहले जो है एक छोटे से ट्रैक को प्ले कर देते हैं, आपके साथ गिपशप का सिलसिला भी जारी रहेंगे, आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाते रहेंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम में जो है वो सरताज की आवाज़ को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। ये सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक के उस बारे की आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून्ड फजल 97.1 एफएम एंड डैप, मिलते हैं इस ट्रैक के उस बारे।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फॉर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरोज की। तो उसी के साथ साथ प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक किया था, प्ले किया था एक बार फिर से दोबारा से अगेन, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपकी ढेरों फरमाइशों को मैं पूरा करती रहूँ, और उसी के साथ साथ उम्मीद करती हूँ कि आज का साथ, आज का दिन, आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन अभी वक्त जो हुआ जाता है वो बड़ा ही सख्त किस्म का वक्त है, बोले तो जुदाई का वक्त है। यानी कि आपके साथ गपशप लगाने के बाद, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है और आइडिया भी नहीं रहता कि अल्लाह हाफिज़ करने का भी टाइम इतनी जल्दी पास आ जाता है। बस हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जुड़ी रहेगी, जारी रहेगी। प्रोग्राम में जो है आप अपनी फरमाइशों को पूरा करवाइएगा, ज़रूर करवाइएगा, ये नहीं कि आप मेरा ही इंतज़ार करते रहिए। खैर, इंतज़ार भी आप कर लें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। जब आपके साथ गपशप लगाने का मज़ा आ जाता है तो टाइम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है। और आपको भी पता है कि जब किसी चीज़ को खाने में मज़ा आने लग गया ना, तो उसका टाइम वो मतलब जल्दी ख़त्म हो जाती है, और फिर जब वो ख़त्म हो जाती है और मज़ा ही तब भी आने लगता है। और जाते जाते मेरा गला भी जो है वो गड़बड़ करना शुरू हो चुका है। काफ़ी टाइम से जो है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे गले में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन यही दुआ करके आई थी कि आपके साथ पूरा टाइम जो है गुजार सकूँ सही से, आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचा सकूँ ईजीली, मुझे बोलते हुए दिक्कत भी महसूस ना हो। बट नहीं हुई, थोड़ी बहुत बीच में हुई, लेकिन अभी जो है मुझे लग रहा है कि अब जो है वो काम ख़राब होने वाला है। वह कोई बात नहीं, हम फिर भी आपके साथ बोलेंगे, आपके साथ प्रोग्राम में रहेंगे ठीक हो ठीक 2 घंटे तक, क्योंकि 2 घंटे बहुत कम होते हैं मेरे लिए। वह अभी जो है वो जाते जाते एक फरमाइश पूरी कर दूंगी मैं। एक फरमाइश मेरे पास छोटी सी आई थी और मुझे कहा गया था कि आपने मेरी ही फरमाइश पूरी नहीं की, बाकी सबकी फरमाइशें पूरी कर दी हैं। सो मेरी जहाँ जहाँ नज़र पड़ती है, जिस मैसेज पे नज़र पड़ती है, और तो मैं उसको ज़रूर प्ले करती हूँ, पर जाते जाते मेरी कोशिश है कि आपकी फरमाइश ज़रूर करूँ। मैं आपको बताया था कि मैं टोन के ट्रैक प्ले करने लग जाती हूँ, अगर सैड ट्रैक शामिल करती हूँ तो मेरे पास फरमाइशें भी उसी ट्रैक की आती हैं, या फिर जब मैं कोई हंगामे वाले ट्रैक प्ले करने शुरू कर दूं तो फिर फरमाइश उस तरह की आती है। बट अभी जो है ना, मैंने मेरे पास फरमाइश आई थी सरताज के ट्रैक की, और मेरे ख्याल से एक ही ट्रैक को मैंने 2 दफ़ा प्ले किया, क्योंकि मेरे पास फरमाइश थी कि इसको अगेन प्ले कर दिया जाए। तो अभी उसी के रिलेटेड जो है ना, उसी तरह की फरमाइश भी हान पहुँची सरताज की आवाज़ में, और कोई शक नहीं है कि सरताज की आवाज़ को सुनने में एक अलग ही मज़ा है। वेल, अब फरमाइश को शामिल कर देते हैं, और मुझे दीजिए इजाज़त कल तक के लिए। अपना अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेवान, अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are playing. We are playing.
11: Fazan 97.1 FM.

उम्मीद है कि आपको खूबसूरत गाना पसंद आया होगा। कि दोस्तों, जिंदगी में कभी भी खुद को दूसरों से कम न समझें। हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद है। किसी की कामयाबी देखकर मायूस होने के बजाय अपने सफर पर यकीन रखें, क्योंकि हर शख्स का वक्त अलग होता है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Baisford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

वापस आते हैं गाने के बाद। दोस्तों एक सवाल है कि क्या हम रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, इनसे पूछते हैं कि आज स्कूल में क्या सीखा, क्या कोई बात उन्हें परेशान तो नहीं कर रही। यकीन करें कि बच्चे महंगे खिलौनों से ज़्यादा अपने वालदैन का वक्त चाहते हैं। और तहकीक भी ये बताती है कि जिन घरों में वालदैन रोज़ाना बच्चों से तालीम के बारे में बात करते हैं, उन बच्चों का एतमाद, सीखने की सलाहियत और अखलाकी रवैया बहुत बेहतर होता है। इसलिए सिर्फ ये ना पूछें कि कितने नंबर आए हैं, बल्कि ये भी पूछें कि आज तुमने कौन सी नई बात सीखी। एक और पैगाम आया है, ये पैगाम है आयशा मीरपुर से। मैं एक टीचर हूँ, तमाम वालदैन से गुजारिश है कि बच्चों का मवाजना दूसरों से ना करें, हर बच्चा अपनी सलाहियत रखता है। आयशा साहिबा बहुत खूबसूरत बात। दोस्तों हर बच्चों में कोई ना कोई ख़ास सलाहियत होती है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, कोई खेल में और कोई मुसव्वरी में और कोई तकरीर में। हमारा काम बच्चों का एतमाद बढ़ाना है, उनका हौसला तोड़ना नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो पहले खुद सच बोलिए। अगर चाहते हैं कि वो किताबें पढ़े तो कभी कभी उसे अपने हाथ में भी किताब नज़र आनी चाहिए। बच्चे हमारे हाथ बातों से कम और हमारे किरदार से ज़्यादा सीखते हैं। और अब वक्त हो गया एक खूबसूरत फरमाशी नगमे का, जो तमाम असातज़ा वालदैन और बच्चों के नाम जो अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए मेहनत कर रहे हैं, सुनिएगा।

दोस्तों एक बात दिल को छू लेने वाली है कि बच्चों से रोजाना सिर्फ एक सवाल जरूर पूछें कि बेटा आज तुमने कौन सी नई बात सीखी। इस सवाल से बच्चे को यह एहसास होगा कि घर वालों को सिर्फ उसके नंबरों से नहीं बल्कि उसकी सीखने की सलाहियतों से भी दिलचस्पी है।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

वेलकम बैक दोस्तों। दोपहर का वक्त ऐसा होता है कि जब कुछ लोग दफ्तर में होते हैं, कुछ अपनी दुकानों पर, कुछ सफर में, कुछ घर के कामों में मसरूफ और कुछ शायद थकन महसूस कर रहे होते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके इस दोपहर को कुछ हल्का फुल्का दिलचस्प और यादगार बनाया जाए। इसलिए हमारा प्रोग्राम आफ्टरनून मिक्स हाजिर है, जहाँ होगी दिल की बात, रोजमर्रा जिंदगी के दिलचस्प मौजूद, हल्की फुल्की गपशप, मुस्कुराहटें, खूबसूरत ख्याल और दरमियान में आपके पसंद के बेहतरीन नगमे। तो चलिए आगाज करते हैं। आज का एक दूसरा सवाल है कि अगर आपको जिंदगी में सिर्फ एक दिन दोबारा जीने का मौका मिल जाए तो वो कौन सा दिन होगा। सोचिए जरूर, क्योंकि अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि हमारी सबसे खूबसूरत याद कौन सी है जब तक हम इसके बारे में खामोशी से सोचे नहीं। कभी स्कूल का आखिरी दिन, कभी किसी अजीज से पहली मुलाकात, कभी दोस्तों के साथ बेफिक्री के लम्हे, और कभी घर वालों के साथ गुजरा हुआ कोई आम सा दिन जो आज सबसे खास लगता है। इसलिए कहते हैं कि आज के लम्हों की कदर करें, क्योंकि यही कल की यादें बनने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, एक और दिलचस्प बात करते हैं कि आपने कभी गौर किया है कि बचपन में हमें जल्दी बड़े होने की ख्वाहिश होती थी, लेकिन बड़े होकर हम कहते हैं कि यार बचपन ही अच्छा था, तब न बिलों की फिक्र थी, न नौकरी का दबाव था, न महीने के आखिर की परेशानी, बस एक गेंद, चंद दोस्त और शाम तक खेलना ही दुनिया होती थी। जिंदगी का हुसन भी यही है कि हर उम्र का अपना रंग होता है, लेकिन हम अक्सर अगले रंग के इंतजार में मौजूदा रंग से लुत्फ उठाना भूल जाते हैं। चलिए अब जरा मुस्कुरा लेते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है तो जवाब क्या होगा? कुछ लोग कहेंगे गुस्सा, कुछ कहेंगे ज्यादा सोचना, और कुछ कहेंगे कि महीने की तनख्वाह आने से पहले ही खत्म हो जाना। अगर आप भी ऐसे लोगों में शामिल हैं तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं हैं। अब एक छोटी सी मुस्बत बात यह कि रोजाना सिर्फ इंसान को दिल से मुस्कुरा कर सलाम कर दिया करें कि आपको शायद मामूली लगे, लेकिन हो सकता है उस शख्स का पूरा दिन बदल जाए, क्योंकि मेहरबानी कभी जाया नहीं होती। अब वक्त हो गया खूबसूरत नगमे का। नगमे के बाद दोबारा बात करते हैं मुख्तलिफ मौजूआत पे। सुनते रहिए फजा 97.1 FM, क्योंकि रेडियो फजा आपका अपना रेडियो।

आप सुन रहे रेडियो फजा एफएम 97.1 और मैं हूं आपका मेज़बान। उम्मीद है कि आप हमारी महफिल को इंजॉय कर रहे होंगे। एक दिलचस्प सवाल करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार उस्ताद कौन था, वो उस्ताद जिसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई बल्कि ज़िंदगी जीने का सलीका भी सिखाया। कभी कभी एक उस्ताद का एक जुमला पूरी ज़िंदगी का रुख बदल देता है। इसलिए कहा जाता है कि तालीम सिर्फ नंबरों का नाम नहीं बल्कि किरदार बनाने का अमल भी है। अगर आपके दिल में आज भी किसी उस्ताद के लिए एहतराम है तो मौका मिले तो ज़रूर उनका शुक्रिया अदा कीजिए। यकीन करें कि उस्ताद के लिए अपने शागिर्द की कामयाबी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं दोस्ती की। दोस्त सच्चे दोस्त की पहचान क्या है? सच्चा दोस्त वो नहीं जो सिर्फ खुशियों में साथ हो बल्कि वो है जो आपकी खामोशी भी समझ ले, जो आपकी कामयाबी पर दिल से खुश हो जब पूरी दुनिया आपसे सवाल करे वो सिर्फ ये पूछे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में भी एक ऐसा दोस्त मौजूद है तो आप वाकई खुशनसीब हैं।

अच्छा सर, एक बात बताइए कि जब बचपन में मेहमान आते थे तो सबसे पहले क्या किया जाता था? चाय के साथ बिस्किट छुपा दिए जाते थे और हमें कहा जाता था कि ज़्यादा मत खाना, मेहमानों के लिए छोड़ दो, लेकिन जैसे मेहमान सर जाते थे वही बिस्किट हमारी प्लेट में आ जाते थे। यही छोटी छोटी यादें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। एक और दिलचस्प सवाल है कि आपने कभी कोई ऐसा काम किया जिस पर आज भी हंसी आती हो, जैसे गलत नंबर पर फ़ोन कर देना, या किसी और को सलाम कर देना, या किसी को दूर से पहचान कर हाथ हिलाना और करीब जाकर पता चले कि वो कोई और था। ऐसे लम्हे पहले शर्मिंदा करते हैं लेकिन बाद में यही हमारी पसंदीदा यादें बन जाते हैं।

दोस्तों, ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीखनी चाहिए कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, कभी खामोशी भी बेहतरीन जवाब होती है और कभी मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत दलील होती है इस बात की। अब सर, एक कप चाय या कॉफ़ी की बात हो जाए, कुछ लोगों की दोपहर चाय के बगैर मुकम्मल ही नहीं होती। किसी को दूध पत्ती पसंद नहीं, किसी को ग्रीन टी, और कुछ कहते हैं कि बस चाय अच्छी हो, साथ अच्छे लोग हों, फिर मौसम खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। आप किस टीम में हैं, चाय वाली या कॉफ़ी वाली? अब वक्त हो गया खूबसूरत नगमे का। नगमे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, सुनते रहिए FM 97.1।

गाना ख़त्म हुआ और एक बार फिर हम हाजिर हैं कि दोस्तों, ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा, शोहरत या कामयाबी? ये सब अपनी जगह अम है, लेकिन अगर दिल का सुकून ना हो, घर में मोहब्बत ना हो, वालिदैन की दुआएं ना हो, दोस्त मुखलिस ना हो, तो बहुत कुछ होते हुए भी इंसान ख़ुद को खाली महसूस करता है। इसलिए रोज़ाना इन नेमतों पर शुक्र अदा करें जो बग़ैर कीमत के हमें मिली हैं। आखिर में इस हिस्से की खूबसूरत बात, दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाइए, दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाइए। फिर मैं कहता हूँ कि दूसरों की ज़िंदगी आसान बनाइए, हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की बड़ी परेशानी ख़त्म कर देगी। मुस्कुराइए, मुस्बत रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि फ़ज़ा 97.1 आपका अपना रेडियो है।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन। हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now. excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट moodnottingham.com 948 Woodpro Road, Nottingham NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट।
4: टेस्ट भी, वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान, आपका होस्ट और आपका दोस्त उस्मान खान। वेलकम, खुश आमदेद जी हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह पकायर राग ले अस्तालविस्ता आओ गाना दिल तराशा। उम्मीद वासे के जो जहां जिस हाल में होगा खुशबाश होगा और अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होगा। बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समात होगा फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज करने का। थ्रू ट्रांसमिशन हमें सुन रहे हैं या फिर फजा डैप पर आप मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां भी जिस दिन जिन समातों से भी मेरी आवाज टकरा रही है दुनिया के किसी भी कोने में, नॉटिंघम या इसको गिरदो नवा, उन तमाम तर सुनती हुई खूबसूरत सी समातों का बेहद शुक्रिया कि आपने फजा 97.1 FM को ट्यून प्लस चूज कर रखा है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव जोन और मुझे कहते हैं उस्मान खान। इस प्रोग्राम में मेरा आपका साथ बड़े खूबसूरत तरीके से निभने वाला है। प्रोग्राम में शामिल होकर बता सकते हैं कि आप फला इब्ने फला मेरे साथ हैं और प्रोग्राम को सुन रहे हैं। प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो 01157100971 पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू मेरा साथ दे सकते हैं, radiofaza.co.uk पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। इसके अलावा जनाब आप मुझे फजा डैप पर भी ट्यून कर सकते हैं अगर आप ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो। बोल जनाब आज के प्रोग्राम में आपकी मर्जी के तमाम तरह ट्रैक शामिल किए जाएंगे, मौसम की मुनासबत से खूबसूरत से रोमांटिक से ट्रैक्स होंगे। अगर आप अपनी मर्जी का कोई ट्रैक मुझसे सुनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको फिलहाल एक प्रोग्राम के आगाज़ में खूबसूरत सा ट्रैक सुनाने वाला हूँ, उम्मीद है कि आपको ये ट्रैक ज़रूर पसंद आने वाला है। इस ट्रैक उस पर होगी आपसे मुलाकात, ढूंढ कर में रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिसनिंग फजा 97.1 FM एंड डैब।

ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। बड़े खूबसूरत सी आवाज आपने सुनी और ये आवाज थी जनाब बोहेमिया की, और उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। आप प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलेंगे और आप सभी सुनते हुए समाज को बताएंगे कि आपने थ्रू व्हाट्सएप मेरा साथ देना है, चाहे व्हाट्सएप पर दे कॉल पर या फिर दें आप मैसेजेस पर। अगर आप मैसेज पर मेरा साथ देना चाहें तो बड़ा आसान सा तरीका है, जो नंबर मैंने आपको बताया है फिर से बता देता हूँ, 0115710097। इस नंबर को नोट कीजिएगा, सेव कीजिएगा और फिर व्हाट्सएप पर जाकर कोई भी पसंदीदा गजल, नज़म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई भी खूबसूरत सा पैगाम लिखकर भेज दीजिएगा। हाँ, साथ में अपना खूबसूरत सा नाम जरूर लिखिएगा और अपने इलाके का नाम भी लिखिएगा। सबका खूबसूरत सा पैगाम जैसे मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, सुनते हुए तमाम तर खूबसूरत सी समातों की नजर हो जाएगा। So are you waiting? जल्दी से कीजिए मैसेज, मुझे रहेगा इंतजार आपके मैसेजेस का। और ना सिर्फ हम प्रोग्राम में आपके मैसेजेस शामिल करेंगे, खूबसूरत सी प्लेलिस्ट भी है हमारे पास, और इसके अलावा कुछ अच्छी अच्छी बातें भी आपके साथ शेयर की जाएंगी ताकि आपकी ज़िंदगी अगर बेहतर है तो इसे मज़ीद बेहतरीन बनाया जाए। ज़िंदगी का मकसद तभी पूरा हो सकता है जिस पे कामयाबी शामिल हो। जब आपकी कामयाबी जो है वो बीच में नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं होगा। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब शख्स बने, और उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कि उसे मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। कामयाबी कभी भी सोए हुए शख्स को नहीं मिलती बल्कि बेदार होना पड़ता है। किसी सियाने ने कहा था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें मोटिवेट नहीं कर पाते तो डीमोटिवेट कर देते हैं। हमें हमारी बातें अगर हम उन्हें अपनी बातें बताते हैं तो वो उनमें हमेशा नेगेटिव पॉइंट निकाल के आपको डीमोटिवेट कर देते हैं, मज़ीद मायूस कर देते हैं। तो हमें, मेरा ख्याल है कि अपनी ज़िंदगी में ऐसी बातें निकालने से पहले ऐसे लोग निकालने पड़ेंगे जो लोग हमें हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। किसी की ज़िंदगी में ऐसे लोग होते हैं, फिर चाहे वो आपके रिश्तेदारों में हो, दोस्तों में हो, फैमिली में हो या बाहर हो, कोई भी हो सकता है। बस ज़रा सा आगे पीछे ऊपर नीचे देखिएगा और अपनी ज़िंदगी को देखकर मुझे बताइएगा कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा शख्स है जो हमेशा आपको डीमोटिवेट करता है, जिससे आपने कभी भी कोई भी बात शेयर की हो तो बदले में उसने सिर्फ और सिर्फ आपको मायूसी ही दिखाई हो, कभी उसने आपको कोई पॉजिटिव वे ना दिखाया हो। ज़रा सा जहन पे जोर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ऐसा कौन सा शख्स है आपके ज़िंदगी में। तो जब तक आप सोचते हैं तब तक ये खूबसूरत सा मैशअप लेकर चलते हैं आगे। I'm your host उस्मान खान and you're listening for the 97.1 FM and also DAB। हमेशा की तरह आज के प्रोग्राम में भी हम अकेले बिल्कुल नहीं हैं, हमारे साथ जो सेकंड पर्सनालिटी है थोड़ी देर के बाद आपके साथ हम कलाम होंगी। फिलहाल इस खूबसूरत से रोमांटिक से मैशअप को एंजॉय कीजिएगा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: Bigger, bigger, and better, better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

ऑरिजिनल वंस अगेन वेलकम बैक आज के लोड के वापसी से सुमित के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं. योर होस्ट उस्मान खान एंड यू लिस्टिंग फॉर द नाइट 7.1 एफएम एंड एक छोटी सी प्यारी सी मुझे कमर्शियल ब्रेक आपने एंजॉय की और कमर्शियल ब्रेक के उस पार उस्मान खान प्रोग्राम ड्राइव जोन में आने वाले तमाम तर नए मौजूद मेहमानों को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हुए बुर्ज खलीफा की लंबाई मोटरवे की नहीं बुर्ज खलीफा की ऊंचाई मोटरवे की लंबाई और दिल किया था गहराई से नए आने वाले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद अपने प्रोग्राम ड्राइव जोन में मेज़बान उस्मान खान. और प्रोग्राम में शामिल होकर आप मुझे बता सकते हैं आज के प्रोग्राम में जो हमने आज के टॉपिक रखा है वो रखा है कामयाबी. और ज़िंदगी में आपसे पूछा गया कि कामयाब होने के लिए आपने अब तक क्या किया है, क्या आप खुद को एक सक्सेसफुल मैन समझते हैं. ये जबान आज इतनी लड़खड़ा क्यों रही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रोग्राम से पहले ऐसी ऊटपटांग चीज़ें खानी चाहिए, लेकिन आप खा चुके हैं सो खा चुके हैं तो इस वजह से आपको ये तो नहीं बताएंगे कि क्या खाया है, लेकिन अलबत्ता ये बताएंगे कि इसके खाने से जबान रुक रुक जाती है. खैर जी, इट्स माय पर्सनल मैटर, तो मैं आपको इसमें बिल्कुल नहीं घसीटूंगा. आपसे जो सवाल किया गया है आप उसका जवाब दे सकते हैं. कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है और आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त आप कामयाबी के किस लेवल पर हैं, इसका जवाब आपने देना है 0115710097 व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके. बैकग्राउंड में खूबसूरत से रोमांटिक से ट्रैक चल रहे हैं मौसम की मुनासबत से, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. बातें शायद मेरी आज के प्रोग्राम में कम होंगी और म्यूज़िक ज़्यादा होगा, लेकिन ये भी तो बड़ी अच्छी बात होती है ना. सो आप खूबसूरत सा म्यूज़िक इन्जॉय कीजिए, मैं लौट कर वापस आता हूँ, बस मेरे साथ साथ रहिएगा.

0: जी हाँ सर, आप ये खूबसूरत से ट्रैक्स आप इंजॉय कर रहे हैं अपने मेज़बान उस्मान खान के प्रोग्राम ड्राइव जोन में, और सुन रहे हैं आप जी फजा 97.1 FM एंड आल्सो डैब। बेहद शुक्रिया आप तमाम तर समातों का जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। उमेर हमारा साथ देते हैं और कहते हैं जी मैं सिर्फ ड्राइव करते हुए आपको सुन रहा हूँ और आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है बड़ा अच्छा है। बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी हल्के फुल्के से लाइट से ट्रैक्स लगा कर मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक ये नहीं है। अगर आप इसी की बात कर रहे हैं, अगर आप बात कर रहे हैं जो ओरिजिनली मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है उस पर, तो थैंक यू सो मच। ओवरऑल जो है मैं एक खूबसूरत सा मैशअप हमेशा जो है वो अपने बैकग्राउंड में लगा के रखता हूँ ताकि मेरी बातें भी आपको सुनाई देती रहें और साथ साथ खूबसूरत सी आवाज़ें भी आपको सुनाई देती रहें। अव्वल जनाब आपसे पूछा था मैंने कि ज़िंदगी में कामयाबी की किस स्टेज पर आप इस वक्त मौजूद हैं, ये आपने मुझे बताना है। बहुत शुक्रिया आपका उमेर प्रोग्राम में शामिल होने का, अच्छा लगा आपका आना। आपके बाद जिमी हमारा साथ देते हैं और कहते हैं जी नॉटिंगम में मौजूद हूँ और आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और इसके साथ साथ हाथ में एक कॉफी का कप है। ठीक है, थैंक यू सो मच जी आपका जिमी प्रोग्राम में शामिल होने का, और अच्छी बात है आपने प्रोग्राम सुन रहे हैं। अगर आपको फरमाइश करना चाहें तो मैं ज़रूर आपकी फरमाइश को प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूँगा। खैर जी, बात आपने भी मुझे नहीं बताई कि आप इस वक्त कामयाबी की किस स्टेज पर हैं। अच्छा, किसी ने बड़ी खूबसूरत सी बात कही थी, उसने कहा था कि जिस
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
10: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
9: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
10: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
9: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
11: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
12: Radio Bazaar 97.1 FM.
13: Hit music. Back to back.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

को मद्देनजर रखते हुए चाहेंगे आपसे इजाजत, खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बट रहा, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। जिंदगी और सांसों में वफा की, तो आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, सेम प्लेटफॉर्म सेम टाइम। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए आपका और मेरा सबका अल्लाह निगे।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: इट्स कमर्शियल टाइम।
3: ओखाना गाय की खुशबू, गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
4: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
3: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
4: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
3: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
4: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
3: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
4: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
3: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
4: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
5: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 97.2 ET
4: पिशावरी डेरा।
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्म कश्म में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ू सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो भर ना

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2
8: You are listening 97.1 FM.

0: देखिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: Radio Bazaar 97.1 FM.
2: Hit music.
3: Back to back.
4: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
5: जो मंगना सी वो तो मिल गया

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु किन्ना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ तो भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक, एक्सटेंशन नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए। जी एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07715299779। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। Book your tickets now, excelsinnawab.co.uk.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी।
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4H.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station
8: that plays
9: foot tapping music.

0: 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिले। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
4: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Radio Fazza, for all your information, communication and entertainment needs.
1: Radio Fazza.
2: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आहा।

0: तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा
1: इट्स कमर्शियल टाइम
2: ओखाना काय के खुशबू गोश्त की जायका और पेशावर का मेहमान नवाजी।
3: कहाँ खान भाई पेशावर पहुँच गए क्या?
2: नहीं जान के टूटे पेशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा।
4: जी हाँ तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
4: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
4: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ भूख लग गई है
2: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: यू आर लिसनिंग टू 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715-299-779 और विजिट अस एट
8: hayatweddings.co.uk।
9: यू आर लिसनिंग टू 97.1

0: रेडी ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: नॉटिंघम तैयार है एक यादगार परफॉर्मेंस के लिए।
2: वे मैं तेनु कितना प्यार कर दिया।
1: 79th पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन।
2: एक बात बताओ तो यादों में मरते हो।
1: आ रहे हैं नॉटिंघम में हसी भेज एंड मुकी। अपनी जबरदस्त लाइव परफॉर्मेंस और ट्रैक्स के साथ भूलिए मत, फ्राइडे 14 अगस्त शाम 6 बजे से रात के तक एक्सेलसियर नवाब 527 लोटस रोड नॉटिंघम NG51EL। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस शानदार सेलिब्रेशन का हिस्सा बनिए।
2: थक गया सुनिए नहीं सुन के तेरे लारियां नो
1: जी, एक यादगार शाम पाकिस्तान के नाम। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 07802988615 07152999। एक ही स्टेज और बहुत सी सेलिब्रेशन, हसीब हेज और मुकी का धमाकेदार लाइव परफॉर्मेंस। बुक योर टिकट्स नाउ excelsinnawab.co.uk।
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
4: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
5: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
4: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
5: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
4: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
5: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
4: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
5: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
4: टेस्ट भी वाइब भी। हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24H.
8: You are listening 97.1 FM.